0: रेडियो दिन रात 93.6 FM, योर अल्टीमेट फोक स्टेशन।
1: ओ ताई छेरे दिले सोनारे गौर, ओ ताई छेरे दिले सोनारे गौर, आम्रा यार।